ओम सदीप नंबुवान की जय। श्री देवेश्वरमती की जय। श्री श्यालकपुरी मायोक्षित की जय। श्री स्वामीनंद भगवान की जय। विश्वकुचि मामदलेश्वर परमहंस गिरिराज।

0: अलकपुरी जी महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय।
1: विश्वगुरु महामान्य स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

की आराध्य भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय।

ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायंत योगिना काम दम मोक्षदम चेव ओंकाराय नमो नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वद्धि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम।

हथेलियों को अच्छे से मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य वो जाता है, मरने जाता है, तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको, ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव महादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों को कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सब

0: सबसे प्रेम करेगा तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईसा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है कील ठोक रहा है उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूं, लोगों के प्रति दया करूं। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो तुम्हारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शांति।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Delight Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Delight Foundation Austria or India? Okay. India. Yoga and Delight
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life.
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: Did I say? Yes,
2: yeah. Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti Vishwa Shanti Nepal ke liye. So Brahma Rishi ji aaiye aap and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahma Rishi.

0: Beat how loud? Nagur. Catch me.
1: Nagur. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोड़ है। 4 लाख मान का जोड़ के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर क्या? जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगरो। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि मैं महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में,

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। क्या

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पश्यंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज धीरे के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी

0: रहे सुखी यारी रे, ओम की रचना सारी रे, ओम की रचना सारी रे। एवरीथिंग, ऑल व्हाट इज विजिबल अनविजिबल, हियरिंग टेस्टिंग फीलिंग, ऑल दिस इज ओनली फ्रॉम वन, फ्रॉम द ओम, द साउंड। ओम इज द क्रिएटर, ओम इज द होल यूनिवर्स, द साउंड दैट हैज, ओम हैज नथिंग, नो फॉर्म टू सी, निराकार, निराकार हैज नो आकार। ज्ञानी जाने वेद सोही, रहे सुखी आरी रे। दोज वाइज पीपुल हैव अंडरस्टूड द ओम, देर विल बी ऑलवेज हैप्पी, सुखी, बिकॉज दे विल नो व्हाट इज द ओम। ओमकार परब्रह्म रूप है, ओमकार, इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ इज द फॉर्म ऑफ द ओम, देन इट इज द ब्रह्म, ओनली ब्रह्म, इट हैज नो फॉर्म, नथिंग, इंटायर यूनिवर्स, ऑल द हाइएस्ट ऑफ द हाइएस्ट, ब्रह्म। You can say different name. If you want to say it in Christianity, you can say the Holy Father. I don't know if it is that. Muslims say it, highest is Allah, nothing is else. Yeah. So the Gandhi wrote one very nice song. ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर एंड अल्लाह इज दाई नेम, ओ लॉर्ड, गिव गुड थॉट्स टू एवरीबॉडी। हु से दैट? गांधी जी। ओम की
1: साया नहीं धूप है, ओमकार सब रूप सदा ही।
0: ओमकार हैव नो शैडो। इफ यू सी द शैडो, then from whom is the shadow? Therefore it is a no shadow. So Omkar have no, nahi chhaya nahi dhoop hai, neither the sun, no light, because light should be from someone. So that is a nirakar. So neither the shadow, neither sunlight.
1: ओमकार नबरूप सदा ही,
0: एंड ओमकार नबरूप सदा ही। नभ इज द स्काई, दैट इज द ओम, ऑल द टाइम्स ओनली ए वेरी क्लियर स्काई ओनली, नो ऑब्स्टिकल, देयर इज नो एनी, even the clouds are nothing, pure nabarupa, that's called nabarupa. What is your form? What is your atma? My atma is in nabarupa, just like all. And where will you, how big are you, what is your color? Go into the nabha and you will see endless and endless this atma. Rosumis, understand? No. Who did not understand? What is a nabha? Sky. Empty sky, everything. That is thy atma, thyself. That is the om.
1: Omkar nabha roop sadahi hai nira dhari re.
0: That one, Om is not based on anything. It is not that we are sitting on the earth. But Omkar has no any base. It is everywhere, equal and same. All is existing in that, but he is in no ones. So is he with all and no one is all. Om, Om, Om. Omkar ki Tirgun Maya. ओमकार की त्रिगुण माया, देर इज थ्री गुणास, विच वन? सत्व, राजस एंड तामस. सो ओमकार

की त्रिगुण माया, दिस इज अ माया ऑफ द ओमकारा, बिकॉज इन दिस एवरीथिंग इज हैपनिंग. सो बट ऑल्सो इज अ यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट होल्ड, यू कैन नॉट. सो सत्वा राजस एंड तामस, दिस ऑल इंटरिंग इन अवर बॉडी, देन यू विल सी हाउ वाट इट इज हैपनिंग. ओमकार में जीव रहे सब, ओमकार ओमकार में जीव रहे सब देहधारी रे. इन दैट ओमकार लिविंग ऑल द सॉल, ऑल जीवास एंड ऑल हु हैव बॉडी, दे आर इन द ओम. Evening we will do continually, okay? So, again, come to the Brahmari. How many times? 15. Okay? Without movements. No movements. Deep inhale. Not moving.

आत्मा दर ध्यान सोहम मुनि मोहन सुख रूप से जा ध्यात्मा प्रभु सुख।